0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: सुन्दै हुनुहुन्छ हेलुम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज।
1: लासो लासो रंखानं
2: नमसे कोर्जी दिमे कोर्जी तातिमुलांगा मैदान दी खामसम खाऊ गादेन प्लांगबरी तामंग सेलो जुहारी
1: नालम आपालाले गृहमंत्री जापनला जोजो मी वैज्ञानिक सुमौसम मापनला गोजे से

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।